0: का हुई कमल अहन बुक खाइल बाटो त
1: एरी ने काका खाई फुला टूरे बारी में गेल रही सबो काट देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
0: सबको कटलक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सबको कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्वदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल कर रहा हूँ
0: सर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रहा है नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था चिंता नहीं
1: खाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकले बात
0: एम्बुलेंस आपू ना समय लागत के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश झट्ट बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमहन का समय में जो उपचार के खर जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहर पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेक्दैथा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
6: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
7: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज

0: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
1: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
0: पढाइ हुने विषयहरू
2: अनिवार्य नेपाली,
0: अनिवार्य अंग्रेजी,
2: सामाजिक गणित,
0: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
2: ऐच्छिक वित्त शास्त्र,
0: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
2: कम्प्युटर विज्ञान।
0: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
2: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
0: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
2: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
2: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
0: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
2: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
0: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
2: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
0: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
2: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
0: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
2: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
0: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
2: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
0: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
2: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
0: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
2: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
0: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
2: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
0: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
2: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन कना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनैला बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: ई लड़का फिर कब्बू कापी रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पी रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारे पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा। सेवा निवृत्त हुईला धर्म सिंह बताला है सम्मान तथा विदाई। जानकी गांवपालिका के अमरावतीमा देवड़ा तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। टीकापुर में ऋग्देव प्रायण महायज्ञ तथा उपनिषद सप्ताह हुईना। भवन निर्माण आचार संहिता संबंधी 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू। कक्षा 10 के पूरक परीक्षा आज से शुरू हुईना। पूरा खबर। टीकापुर नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा हुईबा। अटवार के टीकापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में नगरपालिका है पूर्ण खोप पालिका घोषणा कर गेले खो। टीकापुर नगरपालिका के जनस्वास्थ्य शाखा के प्रमुख बल बहादुर रावल से नगरपालिका रलग 4751 बाल बालिका हुकरन। नगरपालिका भीतर की बाल बालिका हुकरन खोप लगाइल पाछे पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा करगिल जानकारी करेले बाटै। नगरपालिका क्षेत्र में जलम लेहल 15 महीनासम के बाल बालिका हुकरन पूर्ण खोप लगैलक नै लगैलक खोजी करबे। 26 जने बाल बालिका छुटल पागिलो सकुजहन हे खोप देहल पाछे पूर्ण खोप पालिका सुनिश्चितता करगिल रावल जानकारी देले बाटै। खोप लगाइल पाछे 2083 जेठ 12 गते टीकापुर में रलक टीकापुर निर्णय करलक। ओ जेठ 26 गते जिला खोप समन्वय समिति से करलक निर्णय अनुसार पालिका घोषणा करगिले खो। स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के परिवार नियोजन अधिकृत अलत नारायण चापा गाई से 13 ठो रोग विरूद्ध के 9 ठो खोप लगैती। ऐलकमा सकु बाल बालिका हुकरन सकु खोप पाइल पाछे पूर्ण खोप पालिका सुनिश्चित घोषणा समेत करगिलक बटोले बाटै। चापा गाई से नेपालमा खोप के प्रभावकारिता के कारण कुछ रोग उन्मूलन हो सकल। कुछ निवारण के चरण में रलक कटी ढेर रोग नियंत्रण समेत हुईटी मनन के औसत आयु फे समेत बढ़ती रलक बटवा गिलवा। असिगे टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगाजी। वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष यज्ञ प्रसाद न्यौपाने। वार्ड नंबर 8 के वार्डाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुला। पूर्ण खोप सुनिश्चितता करना टीकापुर नगरपालिका के स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेविका हुकरन के काम के प्रशंसा करती। आगामी बजेट में महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक हुकरन के खाजा खर्चा और यातायात में समेत वृद्धि करना पहल करना आश्वासन दई गेलवा। यागेक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रूकमणी शर्मा से स्वयंसेविका हुकरन के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करबेर फिर सेवा सुविधा नई पुगलाक में अपना हुकरन स्वास्थ्य में समेत काम कर खोजलाम खाजा खर्चा में 400 पैना आपन घर और हुकरन काम लगा के ऐलक ओ काम करुया हुकरन 700 रूपया ज्यादा देते हल बटोले बाटे। पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान करलक स्वास्थ्य कर्मी हुकरा। वाड़ा में महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संयोजक हुकरन सम्मान करगिलवा। उत्तर के 40 वर्ष स्वास्थ्य सेवा में काम करते रलक सेवानिवृत्त हुईल धर्म सिंह बटाला है सम्मान तथा विदाई करगिलवा। कार्यक्रम में स्वयंसेविका अम्बिका कोइराला है खोप के सफलता में महिला हुकरन स्वयंसेविका हुकरन के योगदान के चर्चा करती समेत गीत प्रस्तुत करलो है। टीकापुर नगर पालिका के नगर के सकु बाल बालिका हुकरन खोप लगा के 2074 साल से लेके पूर्ण खोप पालिका घोषणा हुई थी। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 के अमरावती में देवड़ा तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम हुईलवा। समुदाय में लोप हुई लागल संस्कृति के संरक्षण करने उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजन कर लगभग आगेलवा। कार्यक्रम में जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 भीतर के पंचबाजा हुड़के नाच ओ समेत सख्या नाच प्रस्तुत कर गिलवा। कार्यक्रम में संबोधन करती वार्ड नंबर 9 के वार्डाध्यक्ष खगेन्द्र भंडारी पाछक समय में समुदाय के तमाम किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम है खोप समेत ऐसे के सांस्कृतिक कार्यक्रम है लोप हुई अवस्था में रलको यही संरक्षण संवर्धन करने उद्देश्य से कार्यक्रम के लग बजेट विनियोजन करल जानकारी देले बाटे। वड़ा सचिव आनंद उपाध्याय से हेरिटेज विलक लोक कला संस्कृति संरक्षण के लग कार्यक्रम के आयोजन करलव टोली कार्यक्रम में महेन्द्र देवकोटा दीपा साउत नम्रता जैसी दीपक रिमाल देवड़ा खेल में समेत दर्शक हुक्र रमाइल रहे। देवड़ा खेल में संस्कृति संरक्षण करना सकुजानी जुटे पर्ना सांस्कृतिक संरक्षण करना आवश्यक रलग बाद में गीत मार्फत प्रस्तुत करगिल कार्यक्रम में सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष जमान सिंह साउत हिमालय माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी समाजसेवी हर्क बहादुर रावल कमल बहादुर शाही लगायत से बोलल हैं। कार्यक्रम में बोलना वक्ता हुक्रा पुराण सांस्कृतिक संरक्षण करना आवश्यक रलग बात में जोर दैगिल कार्यक्रम में देवड़ा कलाकार हुक्रा महेन्द्र देवकोटा दीपा साउत नम्रता जैसी दीपक रिमाल पत्रकार सम्मेलन में सम्मान करगिल रिमाल पत्र मार्फत सम्मान करगिल जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 9 के आयोजन में संचालन हुलक कार्यक्रम संचालन अनिल कुस्मिसे कर रहे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका को निःशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउंड बारे अत्यंत जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वडा नम्बर 6 असार 1 गते नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 7 असार 2 गते सत्ती सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9 असार 3 गते झुङ्गा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4 असार 5 गते अश्नेरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योति नगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
4: सूचना सूचना।

विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। टीकापुनमा ऋग्वेद पुराण महायज्ञ तथा उपनिषद सप्ताह होइना होइलबा मल्लिका विद्यापीठ गुरूकुल टीकापुर के आयोजना में ऐना कार्तिक में समेत सप्ताह होती रहल कहलबा। वेदों समेत उपनिषद के मंत्रार्थ से आम नागरिक उकरण जानकारी देना सप्ताह करने लागल। गुरूकुल के आचार्य टीकाराम आर्य जानकारी देले बाटे सप्ताह में देश के तमाम समेत भाग से श्रद्धालु भक्तजन हुकर ऐना रलकोर से यहां संचालन ओ व्यवस्थापन के लाग रतनराज तिमिर सिन्हा के स्थानीय जगतों में 101 सदस्य आयोजक कमेटी गठन कर ऋग्वेद प्रायण महायज्ञ तथा उपनिषद सप्ताह बृहत तथा लोक कल्याण केलाक समेत कर्जिना कार्यक्रम रलकोर से कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकु जहन सहयोग आवश्यक रहल। तिमिल सेना बटोले महाज्ञ तथा सप्ताह संचालन केलाक न्यूनतम खर्च केलाक 3 लाख से समेत ढेर लगने रलकोर से ऐसी खर्च महाज्ञ संचालन होना आगे नई इच्छुक श्रद्धालु से संकलन करना कहलवा। महाज्ञ तथा सप्ताह आयोजना केलाक छलफल करना अटवार के बिहान के हुलक भेला मां वेद उपनिषद के समेत वचन मकेल इसके सीमित नहीं करके यहां लिखल मंत्रार समेत लगेना सेकना वेद तो है समेत मंत्र उच्चारण प्रवचन कराई पर्ना में धनंजय तिमिर सेना से सुझाव देले बात टीकापुर नगरपालिका के आयोजना में अटवार के भवन निर्माण आचार संहिता संबंधी 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका के निमित्त प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी ओड के अध्यक्षता में हुलक हो। कार्यक्रम में भवन निर्माण मापदंड भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन संबंधी निर्माणकर्मी प्राविधिक कर्मचारी कानून निर्माण करना जनप्रतिनिधि उकरण निर्माण संगे संबंधित जोरगेल ठेकेदार घरधनी उकरण फे समेत भूकंप प्रतिरोधात्मक निर्माण के महत्व के बारे में हो। यह कर पालना नहीं कर रहा कोर से यह कर विपत्ता

कार्यक्रममा नगरपालिकासे इहे कानून कति करबेर नगरपालिकाके पूर्व तयारी ओ यहीसे जनसमुदायमा पुगैनक छिटो छरितो सेवा सुन्दर समेत समुदायके विपद प्रतिरोधी समुदाय निर्माण केलाक भवन निर्माण संहिताके भूमिकाके बारेमे प्रश्न पारगिल रह कार्यक्रममा नगरपालिकामा दर्ता हुलक कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदायक प्राविधिक खुकरण भवन निर्माण सम्बन्धी भवन निर्माण शाखा सहयोग गर्न काम हो जनसमुदायमा देह पर्न सेवा भवन कार्यान्वयनके बारेमे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन फे समेत चौलगाई बटवैले बाटै पिपल चौतारी टोल विकास संस्था टीकापुर एक ब्लक नम्बर 15 के प्रथम साधारण सभा हुईबा संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मी खत्री के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहन विका प्रमुख अतिथि रहे। कार्यक्रम में नगरपालिका के कर्मचारी अमृत रावल टोल में वाड़ा संजाल के अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद रेग्मी छिमेकी टोल के अध्यक्ष सुला रावल खत्री उषा कड़ाइत शेर बहादुर विष्ट लगायत से शुभकामना दिल रहे। साधारण सभा से लक्ष्मी खत्री के अध्यक्षता में लवर नेतृत्व चयन करगिलवा संस्था के उपाध्यक्ष मा दीपक बोगती सचिव मा पवन रावल थापा कोषाध्यक्ष मा ममता आचार्य सह सचिव मा चन्द्र बहादुर बोहरा चयन हुलबाटै भीम बहादुर शाह के संयोजकत्व में 9 सदस्यीय सलाहकार समिति गठन करगिलवा। कार्यक्रम में स्वागत भीम बहादुर शाह कर रही कलश सचिव पवन रावल से संचालन कर रही। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालय में मायाराम चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षक अभिभावक संगठन करगिलवा जेकर सदस्य में लक्ष्मी डंगौरा प्रतिभा चौधरी निर्मला चौधरी लक्ष्मी थारू प्रमिला चौधरी माया चौधरी लगायत चयन हिल बाटनी कलश शांति कुमारी चौधरी हे विद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में छनौट करगिलवा। कार्यक्रम में सत्कार बुक से स्टेशनरी के संचालक वीरेन्द्र रावल से विद्यालय में अध्ययनरत सबको विद्यार्थी उपकरण स्टेशनरी सामग्री हस्तांतरण करवाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख नरेश अवस्थी प्रमुख अतिथि रहे। कलश टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहन बिका विशिष्ट अतिथि रहे। कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 4 गाय बांधेमा बनुआ अतिक्रमण हटैना क्रम में एक महिला से टेम्पो भीरमन से गिराके घटना में संलग्न रलक आशंका में प्रहरी से दहचान हे वन कर्मचारी हे नियंत्रण मलय के पूछपाछ शुरू करलबा सुनिश्चर के हुलु घटना के वीडियो सामाजिक संजाल में भाइरल बनल पासे चौतर्फी आलोचना हुई रह घटना के बारे में अनुसंधान आगे बढ़ेना क्रम में जिला प्रहरी वन कार्यालय के 10 जाने कर्मचारी हे समेत नियंत्रण में लैके बयान लिहल बटवा गेलबा। प्रहरी के अनुसार घटना के वास्तविक पत्ता लगेना वीडियो के प्रत्यक्षदर्शी के कहायु संबंधित पक्ष उपकरण से पूछताछ हुई रहलबा। अनुसंधान के निष्कर्ष के आधार में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ना प्रहरी से जनाइलबा। यह घटना में गोदावरी नगरपालिका 4 बासपानी के 44 वर्षीय धनदेवी धामी से व्यापार के लग प्रायोजित करते आये टेम्पो बनुआ कर्मचारी उकरा भीरमन से गिरा देहल आरोप लागल बा। वहां उकरा अपना उकरा टेम्पो घर ले जीना हो अब वहां व्यापार नहीं करना कहती आग्रह करला से फिर कर्मचारी से नहीं सुन के टेम्पो भीरमन से गिरा देहल बटवा गिल बा। खोज खर बाए घरी विश्राम विश्राम पास है फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।

टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारो सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।

आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 पोस्ट।

0: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान,
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस तो?
3: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
6: विश्राम पास फिर से स्वागत बा। सुर पश्चिम प्रदेश सरकार से आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट सार्वजनिक करते बा। प्रदेश सरकार से चालू आर्थिक वर्ष के तुलना में बजट के आकार में वृद्धि करने तैयारी करलक बटवागिल बा। चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में प्रदेश सरकार से 31,62,98,00,000 रूपया के बजट लाने लागल बटवागिल बा। प्रदेश सभा में आज दोपहर के बजट प्रस्तुत करना कार्यसूची तैयार करल बा। कल से बजट सार्वजनिक हुन आगे मंत्रालय में अंतिम तैयारी समेत तीव्र बनागिल बा। चीनकी 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा गैलक परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल बेजिङ के तमाम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री खनाल चीनकी विदेश मामिला मन्त्री तथा चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य वाङ इके समेत सहगत पूर्ण निमन्त्रणामा आज बिहानकी बेजिङ पुगलके हुए। उहाँ बेजिङके क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेजिङ स्थित के नेपाली दूतावास के कार्यवाहक राजदूत श्रीमती रोशन खनाल ओस्तके तथा चीन के परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी से स्वागत कर बटवागिल बा। आज दोपहर के परराष्ट्र मंत्री खनाल वहां सम्मान में नेपाली दूतावास से समेत आयोजित स्वागत समारोह में सहभागी हुके नेपाली समुदाय हुकरण संगे अंतर्राष्ट्रीय समेत अंतरक्रिया कार्यक्रम से दूतावास से करना जनाइल बा। कार्यक्रम में वहां वर्तमान सरकार के प्राथमिकता सुशासन और संस्थागत विकास, आर्थिक विकास और समृद्धि में केन्द्रित रहना उल्लेख कर बाटे। ईरान के सरकारी संचार माध्यम से अमेरिका और ईरान बीच के घोषित समझौता के 14 बूंदा में समेत हुई दावी करल बा। तथापि समझौतामा बुदा के बारे में कौनो फे मुलुक के आधिकारिक पुष्टि भर नै कर सकल बटवागिल बा। ईरान के समेत अर्ध सरकारी संचार एजेंसी मेहर न्यूज के समेत अनुसार प्रस्तावित बुदामा समेत लेबनान सहित ये सक्कू मोर्चा है समेत थाई युद्ध विराम मा समेत उल्लेखनीय विषय समेत लिखल बा। एक साथ अमेरिका की ओर से ईरान के समेत आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नै गर्ना प्रतिबद्धता फेस समेत सम्झौतामा समावेश समेत गर बटवागिल बा यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा सेवानिवृत्त हुईला कृष्ण धर्म सिंह बताला है स्वागत सम्मान तथा विदाई जानकी गांव पालिका के अमरावती में देवड़ा तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम टीकापुर में ऋग्देव ऋग्वेद प्रायण महायज्ञ तथा उपनिषद सप्ताह हुईना भवन निर्माण आचार संहिता संबंधी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम हो कक्षा 10 के पूरक परीक्षा आज से संचालन हुई लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुनते विराम
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा
8: असार 6 गते पहिलो शनिबार
7: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौँ नजम्ने तालुको रौँ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
9: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
8: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
7: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
10: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
11: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
10: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान से कतरा सुघर बना कन लबाटी
11: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
10: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846439261
12: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई।
1: उफ बल्ल घरक बेटा निखो रहा
2: मुस्कान पिछाई घरक बेटा हमी निक निवराई छो कि का खेतों में सखलारन का लाग मिनी ले जाए पड़ना रह
1: आप लोग वराई जा जानते पादा
2: ले ले वही मिनी बना कर रही है तू ले जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ बिता मत बिला को बा माटी ने सब दिए पर का हाँ सब दियो अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जन्म का डरल
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मत सब का डरलस ले हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कर
3: ना त्याव काकी को मुस्कान निया त्याग का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान है ना स्वास्थ्य का ना सुटाई हर सब निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास्थ्य का सुटो टा
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकल जाए ना मेकअप फांसर बना रही टा वो हाथक चुड़िया की निकाल दी टा वाकर कटला हाथ भर नहीं चला रखना
2: बैठा भैया सबको कर लग ठाक आंजर पांजर चीर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकलना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कट लग घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई तो कुछ खवाई पियाई फिर नहीं हुई पानी फिर नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही नीटार खा वाकर सबको कट लग ठाम और लगा दियो तो ना नानू
3: वो फिर नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु
3: बुझनु काकी रामेसाना मोटरसाइकिल लिखाए कही झट्ट से झट्ट साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्ट चुमर बनाई सेक जाए दादा आई अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही था स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कह कर हरा पुरल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंशक उपचार कई जिना रही था हो वहां ले जाए पड़ल मुस्कान हमें
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई ले
3: ले ले काकी मुस्कान होना हिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान होना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपुआ डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौन सवारी साधन उपलब्ध निभुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: उसने कहा मुंह साइकिल स्थापन से फिर सावधान रहो था मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खर समझ साफ फिर काट से संभव हुई सम कटुया सबको फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी देखाई सकल से भूख सब विषाण अलग निरलग पहचान कई सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सब डसल मन यहाँ बचाई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दिखा सब डसल मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जाए यही मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
7: सानो कुरामा तनाव हुने,
6: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
7: कुलटमा लाग्ने,
6: छटपटी हुने,
7: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
6: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते, 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं रहे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर भर रही थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान के ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिकरा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुही, टीकापुर बाजार में देखनु तुही।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7 गते।

0: बुका पिएर कपिपेन सिलेर कबु झनै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आन्ल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

श्री गुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, उनके मन की आवाज, का उन्नत समाज के रक्षा मा बीसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सकु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संगे अपन स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहत हूँ। मैं मिशन में टेक्नो बेट के साथ दे है संघारी सीपी जी और मैं बात अपनी अपने संग्रह मैं मिशन संघारी कसिन बाटी बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपनों के एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसमें बाटू जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में डिजिटल में यात्रा में जहां रहे से भेन ई गर्मी के समय में जुरा जुरार अभिवादन करना चाहते जुरा जुरार अपने मतलब शीतल शीतल महसूस हुए करना चाह हम कहे कि अपना गर्मी बा का करके गर्मी के समय हो गए बाबू संघारी आज अपने हमारे ज्येष्ठ महीना पे पार करके आज असार के एक गते यानी कि आज से हमार असार लग गिल आज असार के एक गते हो एक गते असार पहले समय में असार महीना लगती के अपना जोरदार तरीका से खेत में धूमधाम के तरीका से हमें खेतवा सुरसार करी कोई एक गते बहुत ढेर मनाई शुभ दिन हो कहीं के सोच और असार एक गते खेतों में पेरी रे सबको जाने किसान हूं के कहीं दादू भैया हूं के सबको जाने तर आजकल ऐसे हो पानी के कारण से फिर खेतवा में पेलना चाहे जो मेरा रौनक रह खेतवा लगेना जो मेरा रौनक रहत पानी के कारण फिर कुछ रौनक फिक्का और देखा पड़ जाए क्या जैसे आज असार एक गति हो हेरी चमक धमक कुछ नहीं हो पानी के बिल्कुल एकदम चटकार घाम बा शायद मेहन लागत आजकल ज्यादा फिर इंजन के पानी यानी कि मोटर के पानी बोरिंग के पानी से खेतों लगेना प्रचलन ढेर भर गिर बाई तमारे जिन जब मन लागत तब खेत लगाई सकते जैसे कोई चैत महीना के मध्य मध्य से शुरू कर सकते कोई चैत बीस चैत पच्चीस चैत जेठ महीना के माफ करी ज्येष्ठ जेठ के 15 मध्य समय से जेठ 20 जेठ अवस्थे के 25 ज्येष्ठ महीना के अंतिम अंतिम समय से हम शुरू करते हैं बदल तर असार एक गति लगभग मनाई पेल जाएगा पहले के समय में तो अब जाही ई मेरा एक समय हो गया बा पानी फेन बिल्कुल समय में नहीं पड़ दे तब मारे हमारे खेतवा लगाना समय फेन एकदम रौनक नहीं बढ़त कहती पानी परे जोरदार परे पानी परे कहती कहती शीतर ई गर्मी मौसम में शीतर महसूस करे एक रमाइलो हमार पौराणिक ऐतिहासिक एक सजना गीत सुनी हमरे गीत सुना तो शायद सजना गीत संगे संगे गाप तो जरूर फेन हमार ई रौनक कुछ बढ़ी और पानी परी का ना हमारे मान्यता बा हमारे गीत जोड़ा गीत के पास मैंने डायर करते कर भी शून्य 91 5 61 200 पर शून्य का लाइन खुल रही बा निशाना लगा एक लाइन।

हजुर बिल्कुल रमाइलो कि जोली कार्यक्रममा बिल्कुल फेरि अपने उकान लागल हुई कि मतलब बर्खा के कुछ रौनक जागे हस लागल हुई एकदमै हाम्रे अपन पौराणिक गीत सुनती गे हमार पुरखनके बचायल सम्पत्ति सुनती गे हमार संस्कार संस्कृति के एकचोटि झलक जागत हमार शरीर के अंग अंग प्रत्यंग हिलत हमार मन में कुछ कौतूहलता जागत कि हमरे हमारा हमार संस्कृति व हमार संस्कार के कुछ कुछ रंग चढ़ती कि हमार शरीर के देह झमझमाइत अपने हुकन पते हुई ई संस्कार ई कारण से होगी कहे कि हमार संस्कृति हो ऊ मारे से अपने हुकन फैन लागत हुए ऐसे मेन तो पक्के थे लागत अपने हुकन फैन जरूर लागत हुई कना हमरे भरपूर आसने बती संगारी वह ई मानी में हमरे कला संस्कृति हमार बहुत बा जैसे बरमासे गीत बा हमरे 12 महीना हमरे फरक फरक गीत गई थी 12 महीना मन हमरे लगभग फरक फरक हिसाब से हमरे नाच नस्थी का सोचा थी भी कब कब नस्थी पकाए थे हमरे नस्थी हेरी जैसे ई बेला में अब हमरे ई सजना गैना हमार समय होगा ई जैसे बैसाख जेठ असार सावन भादव सब हमरे लगभग लगभग हमरे सजना गीत गई थी एकदम समाज में वैसे की असोज कार्तिक मंगसी रोर हमरे झुमरा नाच नस्थी मजा के झुमरा हुरदुंगवा नाच नस्थी रत्यक नाच नस्थी दिन नचुआ नाच नस्थी पके फिर अपने कान पठा भाई इसने सीने हमरे करती गई है वैसे के पूस माघ भर हमरे महीना गीत गई थी वैसे के माघ महीना में हमरे धमार गीत गई थी वैसे के डब बजाई थी तमाम हमारे संस्कार बागा माघ महीना में मंगौटा नस्थी ऐसी ऐसी चीज बागा वैसे की अभिन तो मैं अपने कान फागुन और चैत और हमरे फाग गई थी वैसे के होरी के गीत गई थी होरी मनाई थी होरी के गीत गई थी ऐसी ऐसी चीज बागा चैत सम तो हमरे हरेक चीज से हमरे आगे बढ़ी हमारे संस्कार संस्कृति फरक बा और समुदाय से हमरे एक्चुअली संस्कार में संस्कृति में आगे बढ़ी तो इस चीज है हमरे गर्व के साथ हमरे आगे बाटी कैसी कह सका और हमार थन उ चीज के एक इतिहास फेन बाकना अपने हुकन बुझे सक दी कहती थी ठाव की जोड़ा गीत के पास मैंने बाटू रेडियो सुर कहूं पे नजीबी तब संग ठाव की जोड़ी गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर 91 5 61 255 लाइन खोल ले बा

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतजोली कार्यक्रममा कार्यक्रममा हामी सन्मीको साथ भेटै सँगारे शेपीजी आउ यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सँगारे एकदमै गर्मी वा कोज कति बाटी अपने गर्मी में कसी के दिन बिताइती कसी के समय बिताइती कसी के समय है अपने सदुपयोग कति बाटी सँगारे कुरामै तमनामै फिल्ड से आइटु हुँ डगरमा अपना घाममा काम गरेर देखाटु हुँ तर का करबी काम करबियन घामे नै लक्षण कहाँ हाम्रो डगर डगर निंगुया मन घाम लाग्छ है मिहिन लागत एक मतलब हाम्रो काम कर काम करना मनाई काम करट करट करट करट सब कहीं खर होगी बात जी का बिल्कुल मजा के काम करा देखते हूँ हाँस हाँस के काम करते हैं वहां पे वहां का देख के मीन के खुशी लागते है कि बिल्कुल ओहो काम कर बो तो काम करे शेख जी जाइट कह के लागल क्या तर शेख जी ना हो कसिए महीन तो हिम्मत ना आई थे पके थे तर वहां इतना मजा के काम करा देखू इतना घाम लागते है मीन तर वहां हाँस हाँस के काम करता ही सब कुछ आने संगे वो घामे मन रोटो शायद सेक जाए की कना सक मई फिर महसूस करूं मैं फिर ढेर मन इनके मास में काम करम तो सिकम की कना लागल अकेली करक पड़ले से तो बिल्कुल सबको अनुहार भी कर ले रहा ना सक का घामे के मारे गुहार मनाए तो लाल बिगेन है करछौ लाल कैसी बिल गई थी और सांवर मनाए और सांवर बिल गई ना सक नहीं तुम्हारे आसिन आसिन समय आईटी भाव सबको जाना काम करते बारे काम फे करे परत काम कर बट हर एक चीज के मतलब रहा जस्ता हमारे काम नहीं करत कल से हमार जैसे शुगर लेवल शुगर जैसे उमेर पुगल मनेंगे लगभग 40 वर्ष पुगल मने काम नहीं करत कल से हमार जस्ता शुगर लेवल फेन कंट्रोल में नाइट का तब काम करे कहत का जोन शुगर बा ऐसे जोन कोलेस्ट्रोल बा प्रेशर बा कुछ कुछ काम फेन करती रह पाना हो तब जाके शरीर फेन लाइन में रह तुम्हारे ओकर लग फेन हम एक्सरसाइज हो तो शरीर से पसीना निकल पसीना निकले नहीं निकली कल से हमारे भीतर की बोझ हो कसी के मतलब कुछ घटी वेट घटेना नहीं शरीर मन वेट बढ़ेना का लग नहीं शरीर है रोगी बनेना होगा तो उसी से घटाए लग फिर काम करे बना एकदम जरूरी है कहती जे जहां रही स्वस्थ रही व्यस्त रही काम तो करना हो तर अपन स्वास्थ्य के ख्याल करके फिर काम कर भी गर्मी में एकदम एकदम जोर से अपना घाम बात कर सके थकाई विशाले भी का नाम है हम कहती एक ठाकुर की चोरा बी गीत के पास में डायल करते कर भी 091-5-61-255 के लाइन खुले बता सुन रमाइल करी गीत से गीत के पास में

0: गली भाई करें इस कार्य तो कर दे
1: बाबू पानी
0: आप फिर टूर ना दे ना
2: बरबर वाला
3: असो बरा बढ़िया भी यार बावे ना बरे चूर बावे ले वो हर भाई फुगा दे
1: ले भैया फुगा दे
4: ले
0: अक्के घरिक बयाल अक्के घरिक पानी बरखास्ते हो गए

0: हजुर, बिल्कुलै रमाइलो सजना गीत सुन्दै सुन्दै ठिक व्यापारिक विश्राम लिन बेला हुँदै भयो। एकैछिन व्यापारिक ब्रेक ओर्जाइ सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पाछमै नै बाटो रेडियो सुनेको कहाँ पनि जेबी तर्सम गरेको एकैछिन व्यापारिक विश्राम विश्राम के पाछमै आइ नै बाटो
1: नाता छ वा सापन कुछ नि कराइट सम साप कुछ नि करत ल्या उ अपने चल गेल त कुछ कराइल त ओ सक्कु सा बिखा थे निरट
2: बिखा हो कि नि हो कक कति कति हिना त दाई ल्या नेपालमा पाजिना बिखा सापन क विषय मसु एक ठोरठ गरैचा जोन खास कै ख राति समयमा घर भित्र पैठ सेक्ठ ई कटला से निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ दे भाग जो निचलना कै ख सास फ्यार जो निसेकना मे से लक्क होइ सेक्ठ औरो रठ डोम जोन बडा रिसाहा मे रिकठ निकर फाट फुले ठ डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कै ख संध्या बिहान देख पर्छ निकर कटला से फे लक्क होइ सेक्ठ ओ औरो रठ कैली जातक साप निकर कटला कला से कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था रकत फे पाती होकर रकत बहना हुई से था ओसय का हमार देशक तराई सक्कु भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रना बाधे सांप ई सांप दसलक बेरमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छाको अनाज बिपिना समयमा सापनको कटाई अथवा दसैँको घटना ढ्युर बिना कथा बैया हो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बच्चारा नासिबेल सापनको दसैँको घटना ढ्युर बिना कर्लक पादै
4: ढ्युर जसिन सापनको दसाई हानिकारक नि रहा उह फेर यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
1: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दै था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: टिकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतवास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आन लसे तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कैक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाऊँ रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: आई हो बड्डो, घर कहिया सीज जेबो, पाछ से शुरू करल मने घर सीजा सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नहीं करत, का कही ना हो का
4: मिस्तरान बर्दन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लबाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98481-43-26।

हजुर बिल्कुल आफ्नो कनसँगै मजा मजा गीत सुने गीत सुने कि कार्यक्रम निर्धारित समय डगर कार्यलागल टाटा बाबुकी जाने बेला हो गिल्बा उमारे अटबलसम रेडियो सुनको साथ दिले आफ्नो धन्यवाद देम औसकेमी कि अब टेक्निकल साथ दिया सङ्घार शिविर जेबर धन्यवाद देम औसँगै एकदमै गर्मी बा गर्मीमा काम गर ठिबी खेती किसानीकै समय आइगेल किसान दाजु भाइम कि त अपने एकदमै अपन स्वास्थ्य ख्याल गरे काम गरी अपन स्वास्थ्य एकदमै नियमित ध्यान दैके काम गरी कनमै आफ्नो जानकारी कति बाटो काहेकि सबसे बडा हाम्रो स्वास्थ्य हो स्वास्थ्य बिना के हाम्रो जिन्दगी अधुरो अपुरो रहत त स्वास्थ्य सबसे बसी कलसे हाम्रो जतना फेन जिन्दगीमै काम गरिसकत जीवन में काम करे सबका नाम कहना चाहम काटी पानी नियमित पीबी पानी में शुद्ध पानी पीबी ध्यान देके पानी पीबी सर सफाई में ध्यान देवी कहना जानकारी करती अंतिम एक छोटा माइलो गीत छोड़ती टेक्ने बैठ के साथ सीपी चौधरी है धीरे धीरे धन्यवाद देती मैं मिशन आगा चाहम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते करती।

0: साली काले भो मेलम जागी है खाकले नब साली
1: हजुर हेरे काले न आप मैते उन्चले
0: बुलेले भो की
1: अरे
0: मैं अपन साली गुब्बारा ले फूलूंगा कि साली मिठाई खाइबो कि जिलेबी खाइबो
1: मैं तो हेरो जिलेबी मन पराती है
0: साली जिलेबी ले
2: अरे सब मजा आएगी मजा आएगी।

0: अरे साली अब जिलेबी भी जितना खा सकनो माला गुड़िया ले लेनु
1: अब किन मते किन सकनो खा सकनो हेरी
0: क्या क्या जाएगा हूँ
1: सब ते का भातो
0: हीरो ना जुड़े जाएगा हूँ ना साली
1: हाँ
2: ठीक बात कर लिया हीरो
0: अरे साली मेला की हीरो ने जरूर बटे काय मेला खेला बड़ा साली
1: नहीं नहीं भातो तू कलो मैं बसन नहीं काटे सिकुड़े जाए मेरा झूला

मजा आएगा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मज

0: अरे साली आपसे मेला और खेल सकली सब चीज खेल सकली नहीं हिरोल ना झूल सकली साली आप साल से हुई ना हिरो दिन बुरता
1: बता
0: तो वो है साली नहीं आप चली कहूँ घर कहूँ आप
1: चलो से कहा
2: कन्ना रहने का
0: नहीं मैं साली हमारे और चलो आज
2: वही जगह पर
1: साली वहाँ जिन तो मुझे बाई बाबा करे ही से
2: साली यहाँ से निकल आप निकल तो मैं नहीं भारी मुर्गा मारन की
1: फिर नहीं भाटू अब दीदी दीदी अब फिर नहीं कहीं से
0: तो कहा हुई साली एक दिन तो होने खा ले बोले नहीं बनी
1: तो चलो से कहा दीदी का हाथ चल जी
0: तो वो है कल पौने ने खा ले और सकाए में साइकिल के पढ़ाई में घर
1: हाँ ठीक है बात बातों खुशी बात ले ले
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
4: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
3: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्तशास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान। भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
4: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
3: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
4: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
3: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
4: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
3: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
4: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
3: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
4: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
3: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
4: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
3: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
4: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
3: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
4: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
3: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
4: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
3: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
4: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
3: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ।
4: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
3: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
4: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
5: भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: बाबु ए बाबु कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: ए रुक रुक रुक
5: की भयो किन कराएको यस्तो
4: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
6: इन्सिनमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्ले मा हलिउड र बलिउड मुभीज को फ्री एक्सेस पनि
4: हो र हो नि इन्सिनमा अब मात्र 799 मै सबै अनलिमिटेड
7: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
8: घर परिवार में सभी बिरामी आखिर स्वस्थ रहना स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकनासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
9: होइन चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ हौ तलाई
8: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
9: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
10: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
11: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठक्रला रोड टिकापुर कैलाली

0: नरेश दादू मैं तो अपना फलाइटी की डर से आ गई नो है बहुती कहाँ बाती
1: ओ गोंदे में सुटल बाती बाबू चोली न भरी
0: हो जी कहाँ से काटन अपना न अरे खादर पावे तो सफा सुखर बने लो बाती तो तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना न
2: यहाँ पोली बुकर कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटाबेर में को आप ना हो
0: ना ते बहुजी हमरा बाटी अपना ना कुछ नहीं हुई बिल ग्वारा है ना जिन से रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे से था नगर के क्रो मोटरसाइकिल बाक लाचे उन्हें मैं बैठा कर बहुजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात है दी है न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जनमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सफवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सफवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकर से फरफर करा दी बेरमने अप्रैले से झन समस्या होना हुए को से बेरमने आना शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सफवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खब बनना के कठा असी कर से लगत संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सफवा दशलक शरीर का भाग काट खाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकुरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप संग पात्र नेपाली पात्र में फिर सुनती धलभाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांवपालिका द्वारा उत्कृष्ट नतीजा लन्ना विद्यालय अनुदान जनता मावि कंचनपुर उत्कृष्ट। सांसद के दबाव और राजनीतिक बार्गेनिंग के बीच अभिनसम भारी बजेट लंटी। प्रतिनिधि सभा बैठक नियोजन विधेयक 2083 के ऊपर सफल प्रारंभ। विश्वकप फुटबल ट्यूनिशिया के ऊपर स्वीडन की जीत। जानकी गांवपालिका उत्कृष्ट नतीजालना विद्यालय अनुदान वितरण कलबाट एसईमा सब्सिडी विद्यार्थी पास करना जनता मावि मुनवाह 4 लाख अनुदान दिलबाट स्थान दोस्रो धेहर विद्यार्थी पास करना राष्ट्रीय मावि अमुराह 2,50,000 तेस्रो हुलक भिरकुटी मावि सुवर्णपुर 1,50,000 अनुदान दिलबाट गांवपालिका के भर्म कक्षा 8 मा उत्कृष्ट नतीजालना राष्ट्रीय अरूणादय की मावि खैरीपुर 3 लाख ओ दोस्रो स्थान हलन्ना भिरकुटी मावि सुवर्णपुर 2 लाख अनुदान दिलबाट मोती मावि मोतीनगरमा आज आयोजित कार्यक्रम मावि तहमा अनिवार्य विषयकै उत्कृष्ट शिक्षक हुकन जनही 15,000 पुरस्कार दिलबाट कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट विद्यालय कक्षा 8 ओ एसईमा उत्कृष्ट विद्यार्थी हुकन फिर पुरस्कार दिलबाट पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाकै सदस्य कोमल गेवाली पुरस्कार तथा अनुदान शिक्षक विद्यार्थी हो विद्यालय प्रोत्साहित हुने वातावरण बल्लगबुटीलोबाट गाउँपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरीकी अध्यक्षता महिला कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट सामाजिक विकास समिति के संयोजक कमल महतो वडा नम्बर 9 के वडाध्यक्ष खरिद्र भण्डारी अरूणादय मावि खरी फाट के अध्यक्ष प्रेमराज भाट मोती मावि मोतीनगर के प्रधानाध्यापक दीपक दास कर्णाली पालिका सदस्य पवित्रा विश्वकर्मा लगायत नतीजामा आधारित अनुदान पुरस्कार जानकी गाउँपालिका के शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्न हुल बोटिलोबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै आगामी आर्थिक वर्षकै लागि काफीसम्म सबसे भारी आकारकै बजेट नयाँ तयारी कर्लबाट बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतकै अनुसार चालू आर्थिक वर्षकै तुलनामा करिब 7 अर्ब रूपियाँ बढाएकी करिब 38 अर्ब से धेर बढ़ीकै बजेट प्रस्तुत गर्न तयारी हुँदै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वकै सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2082 के लाख 31,62,98,00,000 रूपया के बजेट चन्ना रही तर आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख वाकर उल्लेखीय रूपमा बढ़ाएके बजेट लना लग्नबाट सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा 25 लाख से कम टुक्रे आयोजना नै धर्नाकै व्यवहारमा 10 लाखसम्मकै कम आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन कलबाट एक स्रोतकै अनुसार यो वर्ष केही 10,000 से धेर बढ़ी नयाँ आयोजना थप्न तयारीबाट बजेट निर्माणमा सत्तारूढ दलभित्र तीव्र दबाव दलबाट सत्ता साझेदार तथा सत्तारूढ दलकै सांसदक र व्यक्तिगत योजना निर्वाचन क्षेत्रकै आयोजनाकै लागि लगातार दबाव बढ़ाइ पाछ मुख्यमन्त्री शाह बजेट विस्तारका नाम बाध्य हुलक स्रोतकै दावी बा। स्रोतकै अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद केलाग बजेट भागभन्दा 8 करोड़ ओ समानुपातिक सांसद केलाग 5 करोड़ पुगेलबाट एमएसए केली करिब 3 अर्ब 61 करोड़ रूपियाँ सांसद केन्द्रित योजनामा विनियोजन गर्न बोटेगिल्बा। खोज खबरमा एक विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीका प्रफेम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिका को कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली। पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
3: ईसीजी सेवा,
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
2: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
0: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रभाग के आज के आवश्यकता हो कलकुटीलबाट लोक सेवा आयोग के क्षेत्रौं वार्षिक उत्सव के अवसर में आज के आयोग आयोजना कलक समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल स्थायी सरकार की रूपमरला कर्मचारी तन्त्र समन्वयकुल सार्वजनिक सेवा प्रभाग मार्फत आम नागरिक मञ्जित पर्णामा जोड़ दिलबाट समारोहमा सांसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति हरि ढकाल लाखौं युवाहकों के आकर्षण के केन्द्र के रूपमरलक लोक सेवा आयोग के समावेशी सहभागिता के दृष्टिमसे सार्वजनिक सेवा कर्मचारी छनौट करके समावेशी लोकतंत्र के उत्कृष्ट अभ्यास कलकबोटीबाट ओस्तंकर के आयोग के अध्यक्ष माधव प्रेग्मी लोक सेवा आयोग प्रति जनता के विश्वास बढ़ीलक कति राष्ट्र सेवक कर्मचारी छनौटमा कायम कति ऐलक निष्पक्ष तह तालिम के ऊपर हुई नदिना प्रतिबद्धता जनेलबाट यही अवसर में आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली सम्मान करल संघ आयोग में कार्यरत तीन जना उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मान करल रहे। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2083 वर्ष मन्त्रालय गत थ्योरिसिनी शीर्षक उपरकी छलफल प्रारम्भ हुँदा छलफलकै आज पहिलो दिन थ्योरिसिन नौठो मन्त्रालयकी विनियोजन शीर्षकके उप छलफल शुरू हुँदा बैठकमा युवा श्रम तथा रोजगार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति कृषि वन तथा पर्यावरण सूचना तथा संचार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन शिक्षा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामुदायिक प्रशासन हो महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी विनियोजन शीर्षकके ऊपर छलफल हुँदै रहल्बा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतकै मन्त्रालयगत थ्योरिसिन शीर्षकके ऊपर 12 जना सांसदगणकै खर्च कटौतीकै प्रस्ताव प्रस्तुत कलबाट खर्च कटौतीकै प्रस्ताव प्रस्तुत गति सांसदक र उत्पादनमा कमजोर प्रशासनमुखी बजेट ऐलक तथा नयाँ उद्योग स्थापना लगायतकै ध्यान पुगत नैसेकलक बोटिलबाट सांसदक र उद्योग मन्त्रालयकै बजेट सुदूरपश्चिम कर्णाली भूगोल छुई नै सेकलक उद्योग मन्त्रालयमा बेनामे शीर्षकमा बजेट विनियोजन कति के कागलाक बेनामे शीर्षकमा धलक हो स्पष्ट पर्ना बुटिलोबाट सांसद र प्रेस स्वतन्त्रता के रक्षकना पत्रकार हकिथन ध्यान दिए बजेटमा व्यवस्था कल्पना बुटिलोबाट सांसद र राष्ट्रपति संस्कृति एन निर्माण जरूरी रलक पर्यटक विकास कलाक संस्कृति विकासमा जोड़ दे पर्ना भाषा भाषी जाति के संरक्षण शिक्षा लगायतकै बजेट ध्यान धेपर्ना बोटिलबाट विनियोजन विधेयकके ऊपर मन्त्रालयगत थ्योरिसिन शीर्षकके ऊपर छलफल जारी रहल्बा। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विष्णुप्रिय विश्राम समुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आइ हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
5: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
4: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुर घुम जाए त था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मुआ का द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
10: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772।
11: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
12: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली। संचालक मदनराज देवकोटा। स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा। खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह एफके खेलमा स्वीडेनके ट्युनिसियाकी प्रतिनिधि कलबाट मेक्सिको मोन्टेरे रंगशालामा आसुल खेलमा स्वीडेनके ट्युनिसियाकी पर 5-1 गोलकी जित कलबाट स्वीडेन खेलाक यासिन अयारी 2 गोल कलक एलेजेन्डर इसाक भिक्टोर ग्योके क्रेस के माके परेश स्पान वर्ग समान 1-1 गोल कलक ट्युनिसिया खेलाक उमार रेगिक 1 गोल फर्केलाबाट खेल सुके शुरूआत 7 मिनटमा यासिन अयार गोल कर्ती स्वीडेनके पहिलो अग्रता दिल्लीबाट उसँग खेलके 30 मिनटमा एलेन्जर गोल कर्ती स्वीडेनके अग्रता दोब्बर पल्ल खेलके पहिलो हाफके 43 मिनटमा ट्युनिसियाके उमार 1 गोल फर्केला सँगै खेलके 59 मिनटमा भिक्टोर स्वीडेनके लागि तेस्रो गोल पल्ल खेलके 86 मिनटके स्वीडेनके लागि मैथी स्पान भरवर्ग 1 गोल थप्ला ओकर पाछा खेलके दोस्रो हाफके अतिरिक्त समयमा एसिन व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीके लाग 5 गोल गरल पाछा स्वीडेनके टिएसिया किपर 5-1 गोल जित्ने कलबाट जितबाट स्वीडेनके शीर्षक 3 अङ्क जोडलबाट समूहकी पहिलो खेलमा नेदरल्याण्ड्स जापान 2-2 के बराबरी खेलती समान 1-1 अङ्क बढ्ल रहे। यी समाचारसँग खोज खबर बढ़ल जेनासे पहिले खबरको मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। जनाकी गाउँपालिकाद्वारा उत्कृष्ट नतिजा लन्ना विद्यालय अनुदान जनता मावि कञ्चनपुर उत्कृष्ट। संसदको दबाव र राजनीतिक बार्गेनिङकै बीच अभिनसम भारी बजेट तन्ती। प्रतिनिधि सभा बैठक नियोजन विधेयक 2083 ऊपर छलफल प्रारम्भ। विश्वकप फुटबल ट्युनिसियाकी ऊपर स्वीडेनकी जित। दिटा बक्ला खोज खबर अत्र प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद। दिटिया बक्ला खोज खबर से मिता चौधरी बिराइटो एकर पाछा 6 बजे की खोज खबर सुन्न सिक्बी। सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्दी रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6।

0: नहीं करने सर।
1: आओ आओ, तू पहले चाइना माता ढील कर लो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू, सर लग के घूमत रहते हूँ, कैसे चेयर सर लग में तो हलचल नहीं करें, मोर सपो का किठा पहन तो पहले जाके
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा से कह रहा हूँ मोर सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से फिर वाकर में रहा बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास संके सप्पा दस सकत वह उससे मुआल बस थम फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेन तो निक नम्मा लच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कैसा जाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा होना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासे संफी सप्पा दस से था संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची वो पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता रहेगा आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेरा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: श्रोताहरू, कार्यक्रम बदलिएको जीवन शैली तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अधिक जानकारीको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ TWR नेपाल, जीपीओ बक्स नम्बर 8975, ईपीसी नम्बर 2561, काठमाडौँ नेपाल। साथै हामीलाई तपाईले फेसबुक, युट्युब, टिकटक र व्हाट्सएपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एसएमएस तथा फोन कलको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9813300690। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.twrnepal.com मा लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
1: बैंकले कभैले कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाइलै तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या, उहिले तमलाई छग्दु खोज्जाछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू। उनीहरू विवरण मागिबर बैंकमी सोधौं, सतर्क रहौं, ठगी बठिए बचौं।
2: सिद्धार्थ बैंक बठियाई, जनहितमी जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
4: कार्यक्रम छोट मिठ, साताके बुधबार दिनके एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
5: जब देखनो तो हिन है।
4: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनेना चाहती, कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत। गीत के बोल बताई, गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना, तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915162555। साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखो तुहिन, टीकापुर बाजार में देखो तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारो सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या।
0: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
5: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमराफारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
6: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाय।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपारके तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 98600071024 ओ 98046 77417।
8: समसामयिक विषयमा छलफल।
9: आफू कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भने प्रहरीको सहयोग लिएर त्यसलाई सुधार नतिर चाहिँ प्रयत्न गर्नु होला।
10: स्थानीय विषयमा बहस।
11: सडकको लागि पनि स्तर उन्नतिका लागि पनि यहाँले आवश्यक पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अवश्य लिएका छौँ।
12: कार्यक्रम आजको चर्चा।
13: पुरुषले 5 बजे छुट्टी माग्ने, 500 रुपियाँ लिने, हामीलाई पनि त एउटा मार्का पर्यो। हाम्रा बाल बच्चा कसरी हामीले पनि पढाउने हो, लिखाउने हो।
8: हरेक साताको मंगलबार बिहान 7:30 बजे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमबाट सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम आजको चर्चा।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज इठा का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कही एक आनल झोला दस कटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारो सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।